कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, अररम तररम दुनिया के कजे कजे गम, कहीं ज्यादा कहीं कम।

तेरे मंदिर के, वो तेरे मंदिर के तस्वीर बन जाऊंगी। मंदिर का साथ है, दिल में की रात है, तू क्यों उदास

जेब जब तक है तेरी भरी, तेरे पहलू में नीलम परी। जेब जिस दिन भी खाली हुई, जान रह जाए।

0: राम के मन में सीता का ध्यान,
1: प्राणों की आरती जलाई है जलाई है।
2: राम जन्म की बधाई है बधाई है। राम जन्म की बधाई।

0: ये अब थोड़ा सा मुस्कुराए रे
1: मुझे पाल माँ गाड़ी पे चलाओ रे चलाओ चलाओ चलाओ रे काहे दिया घबराओ रे मोरा काहे दिया घबराओ रे रुक जाओ रे जाओ रे रुक जाओ रे ओ मुझे पाल माँ अब न सताओ रे
0: आओ रे आओ रे आओ आओ रे।

मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा था ए घटा परस जा।

मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा था ए घटा हाँ बरस जा ए पवन ओ जो मजा